में लेफ्ट और पृथ्वीराज 72 ओवर। मेल एंड स्टाफ कैन यू मीट अस डोर 7 अप सर्विस टिकटिंग इश्यू ओवर।